0: दासी नहीं है आज की नारी, वो समानता की अधिकारी। लड़की ही हर वचन निभाए, श्रीमान जी वो युग बीता। राम मगर तुम बन के रहोगे, मैं भी रहूंगी बन के सीता।
1: स्वीकार
0: स्वीकार।

0: बनाकर रातों को देर से घर पे नहीं आओगे, पार्टियों में ले जाओगे, मेरे लिए वक्त बचाओगे,
1: हाँ हाँ
0: शॉपिंग भी कराओगे,
1: हाँ लेकिन तुम भी

0: शरी शरी, तुमने अच्छी तरह पहचान लिया था, वो विजय था।
1: मैंने ही नहीं बल्कि उसने भी मुझे अच्छी तरह पहचान लिया है पीके।
0: इसका मतलब ये हुआ उसे हमारा पता चल चुका है।
1: हो सकता है कसीनो में उसका आना महज एक इत्तेफाक हो।
0: नहीं शरी, लखनऊ की यह रात याद है तुम्हें? यकीनन उसी तस्वीर के सहारे वो यहाँ तक पहुँचा है।
1: कोई बात नहीं पीके, बेटे को भी बाप के पास पहुँचा दिया जाए।
0: नहीं शरी, विजय के सहारे हमें उसकी माँ तक पहुँचना है, जिसे दीनानाथ ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था और विजय ने ना जाने उसे कहाँ छुपा रखा है।
2: क्या कुछ हो गया है?